अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर। जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिं जो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
2: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबॉरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
8: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
7: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
2: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

मौजूद दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारी इतलाह ते ऑपरेशन कयो वियो। कार्रवाई दौरान 7 दहशतगर्द मारिजी विया। फायरिंग जी ॾे वठि में कैप्टन हमज़ा शहीद थी वियो। ॿिए पासे बलूचिस्तान में रतल फितना 3 दौरान कंबा में आसमाबाद में ऑपरेशन 3 दहशतगर्द मारिजी विया। 12 शकी माण्हुनि खे हिरासत में वरितो वियो। केतिरा ई था तबाह। पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया मां कंहिं हिक ते हमिलो टिनी मुल्कनि ते हमिलो सम्झो वेंदो। टिनी मुल्कनि खे तारीख़ी मका गॾियल दिफ़ाई मुआदो करे छॾियो। सऊदी अरब जे शहर मका मुकरम में टिनी मुल्कनि जो सरबराही इजलास में मुआदे ते सहियूं कयूं वयूं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मके दिफ़ाई मुआदे ते सहियूं कयूं। परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त मुआदे तहत टिनी मुल्क दिफ़ाई सहकार खे हथी ॾींदा। मुआदे तहत कंहिं बि हिकु मुल्क ते हमिलो टिनी मुल्कनि ते हमिलो तसवुरु कयो वेंदो। मुआदे जो मक़सदु टिनी मुल्कनि जे दिफ़ाई निज़ाम खे मज़बूत बणाइण आहे।

वज़ीर-ए-आज़म पारां मके गडि॒यल दिफ़ाई मुआहिदो टिनि भाइर इस्लामी मुल्कनि विच में दोस्ती अमुन ऐं सलामती जी गडि॒यल अज़म जो इज़हार करार। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त फील्ड मार्शल जे अणथक महिनत जो अज़ीम मक़सदु पूरो करण में अहम किरदार अदा कयो। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान चयो आहे त गडि॒यल दिफ़ाई मुआहिदो सिक्योरिटी ऐं दिफ़ाई सहकार खे अॻिते वधाइण में मददगार साबित थींदो। गडि॒यल मनसूबनि खे हथी डि॒यण ऐं दहशतगर्दी जे ख़ात्मे में पिण मदद मिलंदी। सऊदी परडे॒ही वज़ीर फैसल बिन फरहान बि चयो आहे त सऊदी पाकिस्तान ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआहिदो टिन्ही मुल्कनि जी तरक़ी ऐं खु़शहालीअ जो सबबु बणजंदो। मुआहिदे सां इलाक़ाई अमन खे हथी मिलंदी।

ईरान जंग जारी रखण जी पोजीशन में नाहे। आबन हरमुज में जल्द घुर्जे वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान वटि मुआदे खां सवाइ ॿियो को गस्त नाहे। ईरानी सदर मसूद पक्षगान चयो आहे त ईरान पंहिंजे मौके सां पोइते न हटंदो, जंग बदिरां ॻाल्हियुनि ज़रिए हक़ हासिल करणु चाहियूं था।

वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के शहर मका बाद मदीने पहुची वो पाकिस्तानी वक्त सां गड मस्जिद नबी में हाजिरी भरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाज़ुल जना में नफल पढ़ी। मुल्क कौम ए उम्मत लाए खुसूसी दुआओं भी घुरियं। शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल से हाजिरी भरे ज़ियारत की सआदत भी हासिल कई। ऐं मुल्क जे मथान इलाइक़नि में बरसातनि बाद सिंधु दरिया में पाणी वधणु लॻो। गुडू बैराज ते हिकु भेरो ॿीहर विचोली दर्जे वारी बोर्ड डिक्लेयर। गुडू बैराज वटि मथां वेकिरो 2,36,000 क्यूसिक रिकार्ड कयो वियो आहे। सखर बैराज वटि पाणीअ जी सतह में बि वाधि थियणु लॻी, मथां 1,79,000 क्यूसिक थी वियो। कोटली बैराज में बि पाणी वधणु लॻो, मथां वेकिरो 1,79,000 क्यूसिक रिकार्ड। कोटली बैराज जो हेठां वेकिरो 1,42,000 क्यूसिक थी वियो।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में ते ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
1: हिन मिटीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर। जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिं जो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
2: किताबे लेके निकले हम, अमीन कहाना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।
3: जब स्कूल जाएंगे डॉक्टर बन जाएंगे, सोचो अब्बा सबका नाम रोशन कर जाएंगे, छोटे शहर में बड़ा अस्पताल बनाएंगे,
2: औरों के काम आएंगे हम।
4: पाकिस्तान में 48% लड़कियां तालीम के हक से महरूम।
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: ब्रॉट टू यू बाय
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
10: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
11: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मख़सूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
12: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
13: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
12: जेको पेश करे थो 300

0: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576
0: जी हां 2315525786
1: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
1: 90.4। लालन साईं मुझे लालन आहे अल्लाह मुर्शिद।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
8: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125257 86।
4: जी हा, 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: फेसगंज में मुबैना तौर भाव गोलियूं हणी भाव के जख्मी करे छो। गोली लगण सबब जख्मी थियल नाएं क्लास जो शागिर्द नवाब शाह मुंतकिल। गोठ अलीगंज शहर में नाएं क्लास जो शागिर्द अहमद रजा शहर गोली लगण सबब जख्मी थियो। पुलिस मौजूद मालूम थियो आए ते खेस भाव गोली हणी खेस जख्मी कयो आहे। वधीक जांच जारी आहे। तलार वेझो गोठ में पाणी खोट खिलाफ़ गोठाणनि जो मुज़ाहिरो ऐं धरणो। गोठ करम खान दागराणी में ॿिनि महीननि खां वाटर सप्लाई बंदि हुजण खिलाफ़ रहवासी रोडनि ते निकिरी आया। गोठाणनि औरतनि समेत हैदराबाद रोड ते टायर साड़े धरणो आयो। रहवासियुनि जो चवण आहे त ॿिनि महीननि खां गोठ करम खान दागराणी में वाटर सप्लाई जो पाणी बंदि आहे। भोजपुर वेझो बी एस फीडर के लगल घारो बंद न थियो। सवें एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि गोठ मोहम्मद अली ओगाई वटां बी एस फीडर खे 100 फुट जो घारो पियो। पाणी इलाइक़े जे केतिरनि ई गोठनि में दाख़िल थियण लॻो। रहवासी परेशानियुनि जो शिकार। आपाशी खाते पारां घारो बंदि करण जूं कोशिशूं जारी। ऐं मुल्क जे मथां इलाइक़नि में बरसात बाद सिंधु दरिया में पाणी वधण लॻो। गुडू बैराज ते हिकु भेरो ॿीहर विचोली दर्जे वारी बोट डिक्लेयर। गुडू बैराज वटि मथां वेकिरो 2,36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। सखर बैराज वटि पाणी जी सतह में बि वाधि थियण लॻी। मथां 1,49,000 क्यूसिक थी वियो। कोटली बैराज में बि पाणी वधण लॻो। मथां वेकिरो 1,79,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटली बैराज जो हेठां वेकिरो 1,42,000 क्यूसिक थी वियो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए। जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जो पकियूं छितूं लगराण लाइ खुशखबरी। छा चाहियो था अव्हां जे घरन जो छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321320।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
5: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 0331252578
5: जी हां 2315525786
8: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM
0: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां. हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
4: हिन मिटीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद. हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर. जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिं जो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार. सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए.
5: अमर सिंध जे सींद में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल.
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद.
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी.
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230.
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो. सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली.
8: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली. डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी. औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन.
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी. यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो. निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे. निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी. वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842.
9: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत.
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे. सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे.
9: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
10: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
9: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
11: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
7: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
7: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
5: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
7: जी हाँ 2315525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: वाली हिन सिंध ते का एड़ी वराण वरे जो सुख्या डुबरा पाण में भाकुर विजूं भरे ही कायम रहे कयामत।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: कराची जे नौजवान मीर रज़ा जे मौत जो कारण मालूम करण लाइ कब्रकुशाई जो अमल जारी। डॉक्टर जी टीम कब्रिस्तान में मौजूद मरहूम जे जिस्म जा जुज़ा वठी वधीक जांच लाइ लेबोरेटरी मोकिलिया वेंदा। मीर रज़ा जा वारिस ऐं वकील बि कब्रिस्तान में मौजूद, हतमी रिपोर्ट बाद जारी कई वेंदी। सिंधु दरिया में चाढ़ बावजूद सूबे में पाणीअ जी खोट बरकरार। मुख़्तलिफ़ शहरनि में आबाद घरनि जा पाणीअ खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा। शादाद कोट में सैफुल्ला मंगसी ब्रांच मां निकरंदड़ गंदा खारिज। राइट माइनर जे आबाद घरनि जो सड़ियल बिजारो खणी एहतजाज। सिंध बलोचिस्तान जे जमाली रोड वारी पुल ते धरणो। फसल बचाइण लाइ पाणी ॾियण जो मुतालबो। फेसगंज में मुबैना तौर भाउ गोली हणी भाउ खे ज़ख़्मी करे छॾियो। गोली लॻण सबब ज़ख़्मी थियल नाएं क्लास जो शागिर्द नवाब शाह मुंतकिल। ॻोठ अलीगंज शहर में नाएं क्लास जो शागिर्द अहमद रज़ा शहर गोली लॻण सबब ज़ख़्मी थियो। पुलिस मूजिब मालूम थियो आहे त खेसि भाउ गोली हणी खेसि ज़ख़्मी कयो आहे। वधीक जांच जारी आहे। तलार वेझो ॻोठ में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ ॻोठाणनि जो मुज़ाहिरो ऐं धरणो। ॻोठ करम खान दादराणी में 2 महीननि खां वाटर सप्लाई बंदि हुजण ख़िलाफ़ रहवासी रोडनि ते निकिरी आया। ॻोठाणनि औरतनि समेत हैदराबाद रोड ते टायर साड़े धरणो हयो। रहवासियुनि जो चवण आहे त 2 महीननि खां ॻोठ करम खान दादराणी में वाटर सप्लाई जो पाणी बंदि आहे। होसपुर वेझो बीएस फीडर खे लॻल घारो बंदि न थियो। समय एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि ॻोठ मोहम्मद अली ओगाई वटां बीएस फीडर खे 100 फुट जो घारो पियो। पाणी इलाइक़े जे केतिरनि ई ॻोठनि में दाख़िल थियण लॻो। रहवासी परेशानियुनि जो शिकार। आपाशी खाते पारां घारो बंदि करण जूं कोशिशूं जारी। ऐं मुल्क जे मथां इलाइक़नि में बरसातनि बाद सिंधु दरिया में पाणी वधण लॻो। गुडू बैराज ते हिकु भेरो ॿीहर विचोले दर्जे वारी बोट डिक्लेयर। गुडू बैराज वटि मथां वेकिरो 2,36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। सखर बैराज वटि पाणीअ जी सतह में बि वाधि थियण लॻी। मथां 1,69,000 क्यूसिक थी वियो। कोटड़ी बैराज में बि पाणी वधण लॻो। मथां वेकिरो 1,79,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटड़ी बैराज जो हेठां वेकिरो 1,42,000 क्यूसिक थी वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GAFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए। सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786।
5: जी हा 2311-5525-786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।
10: खाली हिन सिंध ते का अड़ी वराण वरे जो सुख्या डुबरा पान में भाकुर।

सदा शहर सिंध जे निज़ारनि ते लिखबो, मेहराण जे मौजुनि किनारनि ते लिखबो, पटके अजरक टोपीअ वारनि ते लिखबो, हारनि मज़दूरनि मोचारनि ते लिखबो, होशू हेमू दोदे पारनि ते लिखबो, मुंहनि जे दड़े जे आसारनि ते लिखबो, जंहिंजो प्यारा सिंध सां तन प्यारनि ते लिखबो, ओ दीदार देस वारनि दुलारनि ते लिखबो, दीदार देस वारनि दुलारनि ते लिखबो।

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-32-41-200।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
9: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
2: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
2: जी हाँ 2315525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: Brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुन जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2301-43-842।
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
10: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
10: 03125257 86
6: जी हाँ 2315525786
10: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। तमाम खूबसूरत मासूमी सोने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल दुआओं के समंदर है, चाहतों की बारिश, लाजवल खजानों के साथ दुआ है, पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, दिन से जगत जमी से आसमान तक, जिंदगी से मौत तक, जहाँ से तब तक हमसे खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे, तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली और जनाब लाड़गाना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटिश एंड जी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम है व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके जनाब, प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं। प्रोग्राम में फन होगा, प्रोग्राम में बातें होगी, प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट होता है, प्रोग्राम में आप लोगों के बहुत अच्छी अच्छी जो है ना वो म्यूजिक कलेक्शन के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स का जिक्र भी होगा। तो अगर आप भी खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती को हमेशा अपने पास लॉक करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा कि चाहे वो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, हर तरह से आपकी खूबसूरती का ख्याल रखने के लिए ये प्रोडक्ट जनाब अब भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये अंदाजा हो जाए कि वाकई मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो कि आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कैसे लगाने हैं, क्यों लगाने हैं, कब लगाने हैं, ये बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे, लेकिन कहते ना कहते नहीं जल्दी किया है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल जी अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर।

यू आर जे एंड यू डी जे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल जी आगे सिद्रा के साथ मौजूद है। हाँ जी भाई, आप कौन कौन हमारे साथ मौजूद है ये बताएंगे और साथ ही साथ अपनी हाल चाल भी बताएंगे। सो डियर लिसनर्स, अंत की हालत कैसे है आपकी हालत? उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुपकूल मूड के साथ सुपकूल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो यहाँ पर आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और फाइनली हमने यहाँ पर एंट्रियां मारी लिया। पता नहीं जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले हैं। कुल मिलाकर ये जो 2 घंटे होंगे इनमें आप लोगों का बहुत ज्यादा वाला सर खाऊंगे। चलें जी, तो सर खाने से बात याद आ गई, यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने काम के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भाई अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की समाय लाने का काम करती भाई ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की समाय लाते हैं, पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत ब्यूटीफुल सी कसीदे के साथ। तो बहुत प्यारा कसीदा जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है और हम कसीदा सुनेंगे, उसके बाद जैसे ही हम वापस आप लोगों के पास मुखातिब होने वाले हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाएं।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं ZFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के तावन से। ओके जी, तो आप लोगों के जवाब सुनकर, आप लोगों के मैसेजेस देखकर मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि आज के प्रोग्राम में बहुत सारी बातें हैं जो कि हम जानेंगे आप लोगों से। और इसी के साथ साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को बताऊंगी भी मैं। ओके जी, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ये बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कौन से प्रोडक्ट जो ना वो इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो, अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों के जहनों में हो कि भाई हाँ जी हमने क्या चीज परचेज करनी है। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए, बहुत अच्छे से जानिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप लोगों को बताया जा रहा है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके इस्तेमाल से आप लोगों को इतना जबरदस्त निखार मिलता है कि आप खुद ही कहते हैं भाई ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोई जादुई निखार तो नहीं है, क्योंकि इतना जादुई प्रोडक्ट ही वाकई इतना मेडिकेटेड फार्मूला है और उसके अलावा इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है ना कि आप देखेंगे तो कहेंगे भाई ही प्रोडक्ट पक डाडो महंगो हूं, पर कोई महंगो ना है ना कि तमाम बिल्कुल अफोर्ड करे सको था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तमाम जी हर स्किन ते सूट करने वालों प्रोडक्ट आए, तमाम सुठी क्वालिटी, तमाम प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट है। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसका भाई तैयार थे लाए विटामिन ई बीड, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन, अल्फारबुटीन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, ये तमाम चीजों एड थियल आहन डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। तमाम चवंदा तो बाबा ये नाला बुधी कर लगे तो हा वाकई अमीरन वारो प्रोडक्ट हों। बिल्कुल ये आए एडो जबरदस्त जबरदस्त चीजों ने जे अंदर एड थियल आहन। अगर तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पया या फिर तमाम इस्तेमाल करण चाहियो था तो तमाम बिल्कुल इस्तेमाल कजो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मेडी फार्मूलो है इनके डॉक्टर की निगरानी के अंदर तैयार करो है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी तुम इस्तेमाल करना था तुम्हें खबर पड़ी बाबा वाकई तुम काशे लगाया था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम आए सो इनके तुम राजे टाइम इस्तेमाल कर सको था। उनका अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई जान डी स्किन ब्यूटी क्रीम हम लगाएंगे तो क्या हमारी ऑल स्किन टाइप के लिए है, हमारी स्किन तो सेंसिटिव है तो क्या हम लगा सकते हैं, तो बिल्कुल जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डिजाइन इस तरह किया गया है, इस तरह तैयार किया गया है कि आपकी अगर स्किन सेंसिटिव हो तो उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है, तो मेडिकेटेड फार्मूला तो आप ऑल स्किन टाइप के ऊपर लगा सकते हैं। और जनाब इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके जिल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है, एक बहुत ही मयारी ब्यूटी फार्मूला है, ये आपके जिल्द को नमी फराहम करता है, चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा रखने में मदद देता है। और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का बाकायदा इस्तेमाल आपकी जल्द की जो है ना बेरोनकी कम कर देता है, चेहरा ज्यादा साफ और रोशन नजर आना स्टार्ट हो जाता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब जितनी सारी चीजें हैं वो आप लोगों की स्किन को फ्रेश एहसास देने के लिए है और आपकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए है, तो रोजाना इस्तेमाल आपकी जल्द को कुदरती निखार और खूबसूरती में चमक फराहम करेगा। तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप रात के टाइम लगाइएगा सोने से पहले। लगाने से पहले एक और चीज है जो आपने यूज करनी है, वो है डी स्किन फेस वॉश। बिल्कुल जनाब, डी स्किन फेस वॉश को कैसे भूल सकते हैं। तो डी स्किन फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, डी स्किन फेस वॉश की भी अगर बात आती है तो ये भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश है जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है। अब आप ये बोलेंगे कि ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम क्या है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट सा चीज है, इतनी इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे फायदा ये होता है आपकी स्किन को कि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हो जाती है, आपकी स्किन डीपली क्लीन हो जाती है और आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेट रहती है। तो ये इतने सारे फायदे आप लोगों को मिल सकते हैं जब आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश ये कि आप नाम लेकर तलब कर सकते हैं, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहां से नाम लीजिए। और ये जो आप बोलते हैं ना डी एस नहीं बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम है, डी आप लगाइए और साथ में आप स्किन को याद रखिए कि हाँ जी आपकी स्किन तो बिल्कुल वैसे ही, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपके पास नंबर्स मौजूद होने चाहिए जिन नंबर्स के ऊपर आप रब्ता कर सकें इजीली अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने के लिए। कोई मालूमात लेना चाहते हैं वो हासिल करने के लिए तो आपने डायल करना है 03-12-50-25-907। और उसके अलावा अगर दूसरा नंबर आप डायल करना चाहते हैं तो दूसरा नंबर है 03-27-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-84-37-38-43-09-03-32-73-
3309. اب ایسا ہے کہ میں ابھی مجھے یہ خیال آیا جب آپ کو میں نے نمبر بتایا تو مہر عرفان سیال صاحب تو واپس آ چکے عمرہ سے, تو میں سوچ رہی تھی کہ ان کا نمبر دوبارہ سے اناؤنس کر دیں, یہ پوچھنا پڑے گا مجھے. تو ابھی تو آپ یہ نمبر جو ہے وہ ڈائل کیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ذرا یہ بتائیے, آج جو ہم نے ایک تھوڑا سا مشکل سا سوال پوچھ لیا ہے آپ لوگوں سے, جس کا آپ لوگ مجھے جواب دینے والے ہیں, کہ کچھ لوگوں کے خاندان میں نا یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرتے, سمجھ رہے ہیں؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس آپشنز نہیں ہیں, آپ لوگوں نے بھائی آپ کو یہ آپشن دیا گیا کہ آپ خاندان کے اندر شادی کر سکتے, تو آپ لوگوں کے پاس دو آپشنز ہیں, آپ پپھو کا گھر سلیکٹ کریں گے یا ماموں کا گھر سلیکٹ کریں گے. ان دونوں آپشنز میں بتائیے ذرا بیسٹ کیا ہے, کس کو زیادہ ووٹ مل رہا ہے وہ میں دیکھوں گی. اور یہ ہماری ایک لسنر ہے, ان کے طرف سے یہ ٹاپک مجھے سجیس ہوا ہے, تو انہوں نے جاننا ہے کہ بھائی لسنرز کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ بہت کنفیوز ہے. تو دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور بابا شادی شوق جی آپ خرچ کرنا کھانا روکے منہ کے اساں جی فیملی میڑو کو سسٹم نہ ہے الحمدللہ. تو سمجھا اوکے, پوسٹ کو لائک اور شیئر کیجیے.

ओके जी, हमारे साथ यहाँ पर हैप्पी की थी आरजे। ऐसा लगते हैं आई थिंक मामू का घर बेहतर है पर पप्पो का घर भी कम नहीं, वो भी अच्छी है। ये टॉपिक आंसर यानी आपने तो फिर मामू को सिलेक्ट किया ना, फिर ठीक है इसको हम जरा लॉक कर देते हैं। ओके जी, हमारी निदड़ी हमारे साथ मौजूद, कहती है हेलो स्वीटी, वेलकम टू शो, हेलो टू यू प्यारी। और उन खां अलावा सादिया तव्हां गाने जी फरमाइश कई, मां कोशिश कयां थी तव्हां जो गानो हलाईंदासीं। इकबाल आशारी हमें सुन रहे हैं, विलेट सोनो खां लाशारी मिरपुर खां से कहते हैं सुन रहे हैं बाजी सिदरा, वेलकम, आपको भी वेलकम कहा जाता है।

ओके जी, एसएनआर वाणी क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम और सलामत है। ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान, कैसी हैं? माँ सब ठीक था, बुधा की आयो मजे में। अखलाक भाई कहते हैं अंसर मामा मामी जिंदाबाद। ओ जियो करे से। किशोर भाई आ चुके हैं, सलाम अद्दा स्मार्ट हाजरा, कैसा आयो? खुश आयो? सफा मस्त मजे में तो मैं के मन से। ओके जी, स्मार्टो गोपां कहते हैं टॉपिक आंसर, मेरे ख्याल में शादी के लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि रिश्ता पुप्पो के घर में है या मामों के घर में। शादी जिंदगी का एक अहम फैसला है, इसलिए रिश्तेदारी से ज्यादा जरूरी है कि सामने वाला इंसान समझदार, नेक, जिम्मेदार और हमारे खानदान के लिए मुनासिब हो। रिश्ता कहीं से भी हो सकता है, लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए। यही मेरी नजर में एक समझदार फैसला है, समझदारी वाला फैसला है। ओके, और मैंने एक चीज नोटिस करी है, चाहे हमारे जो बुजुर्ग है ना, हमारे जो घर के बड़े हैं ना, उन्होंने अपने खानदान में रिश्ते कराकर कितनी ही तल्ख चीजें मतलब जो है ना वो देख ली हैं, हासिल कर ली, अपने बच्चों को तकलीफें दे दी हैं, लेकिन फिर भी उनका ये एक मानना होता है कि भाई शादी करनी है तो अपनों में करनी है। हाँ जी, पहले जो सबक सीखे वो कम नहीं थे। आगे भी करनी है, अपनों में करनी है। ये चीज मुझे लगता है कि हर किसी के खानदान के अंदर पाई जाती है। ऐसा है कि आजकल जमाना जैसे आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों में ये चीज अवेयरनेस जो है ना वो आ चुकी है, लेकिन अभी कुछ लोग बहुत ज्यादा मौजूद हैं जो कि इस चीज को बहुत अच्छा मानते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चों की जिंदगियां खराब हो तो हो, लेकिन शादी अपनों में करनी चाहिए। कीजिए भाई, कीजिए। और इसके अलावा आप पोस्ट को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाना खां भी रोकियो न मुखे।

0: वाह साईं वाह
1: भलो गानो एंजॉय कयो पया। और चाचा खालिद कहते हैं दोनों घर सही नहीं है, बाहर करें शादी। मैंने अपनी बेटी और दोनों बेटों की शादी बाहर की है, अपनों में तजुर्बा नाकाम रहा बेटा से जो हाँ सुतल सूर न जगाए नी। यो टॉपिक आंसर डिसो पेरा अगर यो मतलब आहे तय थियल त पेरा जको असा के टेस्ट करनो वो पांजन में करनो आहे, वो भलो सबक हासिल कदासी पो बाहर वेंदासी। ऐं सुठो अगर ईअं हुजे त तव्हां स्टार्टिंग में ई जेको आहे न सुठो कोई फ़ैसिलो वठो। ऐं तव्हांखे इहा चीज़ ख़बर हुजणु घुर्जे त बाबा शादी जे लाइ हिकु इंसान सुठो हुजणु घुर्जे, उहो पंहिंजनि मां आहे या फिर किथां ॿाहिरि आहे, इन चीज़ मां तव्हांखे फ़र्क़ु न पवणु घुर्जे। खैर असांजी ॻाल्हियुनि खे त इहो चयो वेंदो आहे बाबा ॿार आयो न तव्हांखे कहिड़ी ख़बर, इहे वॾनि जा फ़ैसिला वॾनि ते छॾे ॾियो। बिल्कुल जी तव्हांजा फ़ैसिला तव्हां ते छॾे ॾिनासीं। इन खां अलावा तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो, इहा त तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि मञी सघो था न। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं डी स्किन फेस वॉश आहे जेको तव्हां इस्तेमालु कंदा ऐं पंहिंजे ख़ूबसूरती खे सफ़ा नेक्स्ट लेवल ते वठी वेंदा। ये जब भी मैं कोई शादी वाला टॉपिक रखती हूँ ना तो मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि गाने भी शादी वाले होने चाहिए।
2: So, देखे शादी जो इंतजार जो आपे करार,
1: ओहो हथ

0: आजार खान जतोई हमें सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह गुड शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। निगड़ी कहते हैं कि हम दोनों जवाब सुनेंगे बस। हाँ जी ठीक है, अच्छा मस्त आइडिया है। और उनका अलावा हमारे साथ ही सादिया कहती हैं टॉपिक ये अपनी अपनी पसंद की बात है। हाँ जाई बुदा ऐसा कहते हैं टॉपिक आहिंद भाई सही कौन पर वरी भी असा मामू जी घर के सिलेक्ट करना सी। ओह उपो को देखे अभी तक वोट नहीं मिला एक भी नहीं।
1: नचे
0: ये बहुत बुरा है।
1: मस्त मौज मचे मटन सा मस्त मौज मचे।
0: ओके जी अब्दुल गफार भाई हमारे साथ है, खुश आमदीद कहते हैं प्यारे भाई को। और हाले सुल्तान हमारे साथ है, हेलो वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं? मैं ठीक हूँ आप बताएं हाले सुल्तान आप कैसी हैं? कहती हेलो सिद्रा वो सॉन्ग भी मजे के होते हैं जो समझ नहीं आते अभी आपके बैकग्राउंड में चल रहा है, समझ नहीं आ रहा बट मजे का है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे हाले सुल्तान का नाम देखकर ना मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कोई ड्रामा है जैसे आजकल नामों के एड नहीं आते। देखिए आज रात 8 बजे हाले सुल्तान बिल्कुल वैसे ही

ना बाबा अला बना डे पुफिन का असां पहिरियां ई इहे जेके न सटियल आहियूं हिननि जा सो ख़ैर हिन ॻाल्हि खे थोरो डिस्क्लोज अच्छा मैं जो है ना एक बात सोच रही थी कि आप लोग जो है ना इस टॉपिक के ऊपर जवाब दें तो जरा सोच समझ के दीजिएगा ठीक है और उसके अलावा अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिएगा और इसके अलावा अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए वहां से नाम लेकर तलब कीजिएगा क्योंकि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो लाजमी है कि आप जो है ना नंबर्स आपको बता रही हूं उनके ऊपर रब्ता किया तो बिल्कुल नंबर्स के ऊपर रब्ता करिए अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराइए और जनाब इस्तेमाल करते जाइए क्योंकि खूबसूरती यहीं से स्टार्ट होगी कि आप जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का यूज करना शुरू करें और पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें मेरे बिना कहे क्यों इतना कहलवाते हैं।

अच्छा सुफियान अहमद हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम सुफियान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है। दादा खालिद कहते हैं डी स्किन क्रीम वालों का लोशन अवेलेबल, डी स्किन का नहीं लेकिन व्हाइट एज का लोशन मौजूद है, वो व्हाइट एज का लोशन ले सकते हैं।

अच्छा, ये तो आप चाचा कह रहे ना कि उसको बोलें कि दोनों जगह मना कर दे। अब उनके खानदान में ये चीज है कि भाई आपने खानदान में ही शादी करनी है, तो उसको दो बस ये ऑप्शन मिल गए हैं कि या तो पप्पो के घर हाँ कर दे या तो मामू के घर हाँ कर दे। तो बेचारी बड़ा फंस गई है वैसे ये थोड़ी अजीब सी बात है, कह भी क्या सकते हैं। अच्छा हैप्पी कहती हैं आरजी, अगर कोई किसी को पसंद करेगा तो वो ये दोनों ऑप्शंस चूज नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है, और ये जो है ना कर किसी की सोच पे डिपेंड करता है। आप समझ गई ना, मैं थोड़ा थोड़ा समझी। अगर पसंद ना करे तो फिर उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं ना, तो फिर इन दोनों में से किसी को चूज करना पड़ेगा, ये लग रहा है मुझे।

अहद जरवार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहा जाता है। सादिया कहती है मैं समझ गई, अच्छा है। और दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। चंदा जाने बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं स्वीटी कैसी है?

जनाब क्या बात है, बिल्कुल जी आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अच्छा ये ना एक चीज है भाई, सदियों से ये चीज चलती आ रही है, हमें लग रहा है कि हम जो है ना, यानी कि हम जब बुजुर्ग बनेंगे तो इस रिवाज को, रस्म को जरा साइड पे रखेंगे, वरना जो हमारे बुजुर्ग है ना उनके लिए भी सबसे पहला ऑप्शन जो है ना वो पांजा है, पांजा हिकड़ी जी का ये कहावत आए बाबा त पांजा कीअं चवंदा आहिनि, पांजा मारे शाम में छलींदा आहिनि, अलाए कीअं, मतलब ये हिकड़ी कहावत आहे मूं ॿुधी आहे, तव्हां हिनखे ज़रा मतलब सही कयो या कहावत कीअं आहे। मां हिते वठां थी जनाब न्यूज़ ब्रेक, हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे, मोटी जल्दी तव्हां ॾे अचूं था, तव्हां कॾहिं न वञो हिते वेठा हुजो, ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटूं था, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

हमीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, प्रोग्राम वाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो हमने पहले आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश के बारे में बताया। तो फिलहाल आप लोगों को बताया जाएगा वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जिन लोगों ने अभी अभी हमें सुनना स्टार्ट किया, जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 8881 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जाएंगे और इसी के साथ साथ पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ना, मैंने आज आप लोगों से सवाल ये पूछ लिया है कि आप मुझे बताएंगे कि भाई एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल हमारे आज प्रोग्राम का हिस्सा है। तो सवाल कुछ यूं है कि आप मुझे बताएंगे कि शादी जो है, यानी कि कुछ लोगों के खानदानों में ऐसा होता है ना कि वो सिर्फ अपने फैमिली में ही शादी करना पसंद करते हैं, तो उनको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते। तो उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि या तो आप फूफे के घर में शादी कर लें या तो आप मामों के घर में शादी कर लें। तो इन दोनों ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है, कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूटेबल होगा? और आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 8881 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जाइए। इसी के साथ साथ मैं जरा आप लोगों को वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं। तो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने का जो सिलसिला है ना, वो यहाँ से जरा स्टार्ट होता है कि वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए कितने सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को वाइट एश ब्यूटी क्रीम मिल रही है। ओके जी, सो वाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ वाइट एश ब्यूटी सोप आपको मिल रहा है, वाइट एश आपको फेस वॉश मिल रहा है, वाइट एश लवली क्रीम है, डॉक्टर पिंपल एंटी एग्नी ट्यूब है। उसके अलावा बहुत सारे मजे मजे के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि वाइट एश का आपको लोशन मिल रहा है, वाइट एश का हेयर रिमूवल लोशन है जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर पाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी आपको लगे कि ये प्रोडक्ट तो हमारे हिसाब वाला प्रोडक्ट है, इसे तो हमें लगाना ही चाहिए, तो बिल्कुल आप उसे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि वाइट एश ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आप मार्केट जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या परचेज करने जा रहे हैं और आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, और वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि आप लोगों की स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, वाइट एश ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर एवोकाडो है, एलोवेरा है, मिल्क है, और इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाती है, फेयर हो जाती है, आपकी स्किन को प्रोटेक्शन भी मिलती है और साथ ही साथ आप हमेशा खूबसूरत बने रहते हैं। तो वाइट एश ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो वाइट एश ब्यूटी क्रीम आपकी जिल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है। आपकी जिल्द को नरम, मुलायम और तरोताजा बनाने में मदद देती है। अगर आप वाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल

ऐसन कहते हैं कि वडन के छा के जे बाबा मु त असा के देणो पंदो हा कि हा हकीकत आ वैसे पोवरी चंदा बाबा नसीब तस नसीब तस बच्चे ने जाने। अब्दुल गफार हमारे साथ, अब्दुल गफार केसर भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको खुश आमदीद के साथ साथ। नदी कहती ओ हो कौन सी चैनल पर ये ड्रामा आता है, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ बस हमने प्रोमो बना के रखा है अच्छा आदिल कहते हैं कहीं पर भी इंसान शादी करे इन दोनों के घर में नहीं करनी चाहिए, सही है भाई। ओके सुफियान भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं।

राजा जिनकी शादी हो चुकी ना, ये गाना उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आप खुश मत हो। ताजे गणते एक दफो धूल वधी गया ना, आने बस क्यों। हाँ तो बस वाइटिश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर सही है। अच्छा सुमाटो गोपां कहते हैं पांजा मारे कोई भी शाम में रखना है ने। हाँ सही दा प्यारा हो जो ना तो मारे नहीं जो। और दिया परी हमारे साथ है। दिया परी कहती अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। मैं आपकी साइलेंट खामोशी को तोड़ मरोड़ के आ गई। साइलेंट लिसनर है कहती है स्वागत नहीं करेंगी मेरा दिया परी, आपका ऐसे दिल से स्वागत कहा जाता है। और आप बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रही है। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे प्यारे प्यारे लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और कहते हैं अस तक बुध न आयो पर शामिल न थी आयो तो तवा जो मोहब्बत हुआ बाबा दिया परी थैंक यू। और जी आदिल तवा जवाब दिनो आए ओ हिदू वडू जवाब दिनो धवला गसी करे। चलो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। ओके कहते हैं कि लड़का या लड़की की शख्सियत सबसे अहम ये है कि सामने वाला इंसान कैसा है, इज्जत करता है, समझदार है, दीन और इखलाक ठीक है, नाम मामू हो या पुप्पो फर्क नहीं पड़ता, और फैमिली का मिजाज और हाँ मिजाज भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। कहते हैं कि मामू के घर पहले से जान पहचान है, रस्म और रिवाज सोच स्टेटस का अंदाजा है, रिश्तेदारी की वजह से रिश्ता निभाने का प्रेशर भी होता है, पुप्पो के घर नया खानदान वहाँ एडजस्ट होने में वक्त लगेगा, लेकिन अगर उनके उसूल तुम्हारे घर से मिलते हैं तो कोई मसला नहीं। कहते हैं कि घर का नाम नहीं लोग देखो, जहाँ इज्जत दीन समझ और इखलाक बेहतर लगे वहीं रिश्ता करो, चाहे वो मामू हो या पोपो हो। सही है।

0: गिदड़ी ने कहा है मतलब पप्पू को कोई वोट नहीं दे रहा, अभी तक तो नहीं मिला। अच्छा दिया परी कहती है मेरे लिए सॉन्ग प्ले कर रही मास्टर मजदूर का डेडिकेट अली मुर्तजा अंसारी। क्या बात है, अली मुर्तजा अंसारी नजर नहीं आ रहे, वैसे वो कहाँ गायब है।
1: मेरी आहों का तेरे दिल पे असर को।
0: एक बहुत अच्छा मास्टर मजदूर का गाना लगाएंगे आप दोनों के लिए, ठीक है।
1: मेरी आहों का तेरे दिल पे असर कोई नहीं।
0: वैसे दिया
1: क्या गुजर?
0: आप तो जानती हैं, आप हमारा प्रोग्राम सुनती हैं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो बताइए जरा वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस्तेमाल कर रही हैं या फिर अभी सोच रही हैं?

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4।

ये मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम इरम, हमारे साथ है मुझे प्यारी दिलबर दोस्त जानी। मैं तो शादी शुदा हूँ, अब मैं क्या ही जवाब दूँ? नहीं, आपको पता होगा कि आपने क्या जवाब देना है। आपको क्या लगता है कहाँ करनी चाहिए?

0: भाई ही तो इलाज करे पर तमा वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा ता सोना थिंदा त के इलाज करने की जरूरत न पड़े। अच्छा ये बाजू दी वाले को मसलाम आपी कैसी हो? अपनों में अपनों ने ना हमें बहुत दर्द दिया है। अपनों में शादी तो कभी नहीं करनी चाहिए। आई एम सितारा सुल्तानपुर से आप हमें सुन रही हैं। प्लीज बोले अहमद मुगल आप ही मुझे दुआ करें। बिल्कुल आपके लिए दुआ करेंगे मेरी प्यारी सितारा। और आपको वेलकम कहा जाता है। अच्छा ये हमारे साथ है सज्जन माशी गोठ जान मोहम्मद माशी मोरो का तमाम से जो प्रोग्राम बुध पाया। थैंक यू मकसूद कहते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता मकसूद, ये पूछना पड़ेगा। हाँ जी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए। कामरान लगारी हमारे साथ कहते हैं सिद्राबाद जी हमें सॉन्ग सुनाए पाकिस्तानी ड्रामे का, यार तो यार होता है। डेडिकेट कुर्बान अली मीर हसन लगारी थैंक यू। अच्छा भाई आपको गाना मैं सुनाऊंगी 5 बजे वाले प्रोग्राम में, ठीक है? आप लाजमी मुझे ज्वाइन कीजिएगा। और उसके अलावा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका शो हमें बहुत अच्छा लगता है, आपके शो का इंतजार होता है और आपका शो बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच कामरान लगारी भाई, आपको वेलकम कहते हैं। आप हमें मोरो से सुन रहे हैं। मोरो में भाई आपके लिए वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो आप जाइए और परचेज कीजिएगा, ठीक है? अल्ताफ को समय सुन रहे हैं जाग जानी चाचू, कहते हैं प्लीज ओल्डी गोल्डी गाना लगाइएगा। और कहते हैं डेडिकेट यू एंड अजरा खोसो रिजवान साहब। ओके और मोहम्मद शरीफ कुंभ हमारे साथ, मोहम्मद शरीफ कुंभ विलेज नबी बख्श कुंभ मातली कहते हैं मामों के घर शादी करनी चाहिए। भाई इतने मामों को वोट क्यों मिले हैं? एक भी बेचारी पुप्पो को वोट नहीं मिला। हाय ये सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कसम।
1: करते करते मेरी उम्र बीत जाए।
0: अजू नखा अलावा ही एस एस गुड मौजूद आए। सलाम बाजी जुल्फकार अली खोड़ो हमारे साथ है फ्रॉम आकिल कहते हैं बाजी सदरा शो नाइस तवाजो सब का बेहतर रिश्तो चाचाणो आ चाचाणो घर अफजल आ जे मोहब्बत में मजो नाए त धारिया उन खां बेहतर आ। ओके ओके जुल्फकार भा थैंक यू तुम्हारे से गुड मौजूद आए। अच्छा ये अल्ताफ खोसो जागजानी साचू हमारे साथ है, वही मैसेज आपने दोबारा शेयर कर दिया उसके लिए थैंक यू। और मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ है, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला महर भाई जान। और हमारे साथ है साइमा मीर कहती कभी कभी दिल के सुकून के लिए सारा जहां नहीं बस उस एक इंसान की जरूरत होती है जिसे मोहब्बत हो। अस्सलाम वालेकुम मक्खन जैसी आरजे क्या हाल है? मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसी? मैसेज इतना था या फिर मुझे मिसिंग पार्ट मिला है?

0: भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना सुन रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रोग्राम सुन रहे हैं। वाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सावन से। अच्छा सैम अमीर कहती है वाह जी वाह सिद्रो क्या सिंधी गाना प्ले किया है, छुपा के रखना अपने वैसे कौन से वाले की बात कर रही हो। और कहती टॉपिक जी बुआ हलड़े हिकड़ो वोट तो फाइनली बुआ के मिलियो माशाल्लाह माशाल्लाह नजर न लगे
1: खुशियाँ।
0: अच्छा ये हमारे साथ है साइमा बीहर तमाम जो मैसेज आ दिल तो चवे सिद्रा आई निदली भी टॉपिक थी रोशनी विजन सलाम बीमार निदली के बीमार न उदास निदली के आई बिल्कुल निदा के चौथा बाबा तहां टॉपिक जो जवाब दियो। अरीबा हमारे साथ ही प्यारी आप ही जवाब है मामू का घर मेरी एडम ने भी अपने मामू के घर को सिलेक्ट किया तो मैंने भी अपने मामू के घर को सिलेक्ट किया। आज क्या बात है जबरदस्त।

ओके जी, गाना खत्म हो गया और नेक्स्ट गाना खुद ही चल गया। ये जो प्रोग्राम का ये गाना जो लगा है, ये प्रोग्राम का लास्ट ब्रेक होने वाला है और इसी के साथ साथ हमारे जाने का वक्त भी बिल्कुल करीब आ चुका है। आपके इतने सारे फीडबैक्स अभी भी रहते हैं तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो हमें मैसेजेस करते हैं और आप टाइम निकालकर हमारा शो भी सुनते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करने वाले हैं। तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो जल्दी से करना स्टार्ट कीजिए। या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, हर तरह से आपकी स्किन का ख्याल रखते हैं, हर तरह से आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करते हैं और हर तरह से आपकी खूबसूरती को बहाल करते हैं। तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको हर तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप परचेज कीजिए, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा।

0: ओके जी, दिया पर ये कहती है फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ, बाकी मैं नेचुरल ब्यूटीफुल हूँ, खूबसूरती को भी जेलसी होती है मुझसे। क्या बात है दीदी, अली मुर्तजा मसरूफ है पता नहीं कहाँ, मुझे यहीं पर नजर आता है और कहीं नहीं नजर आता, सच्ची बताए एनो मसरूफ मानो। अच्छा किशोर भाई कहते अदा अगर मुझो को कमेंट रीड न था थियन अल्लाह पो फील थी दो आ, मु कुछ गलत चाहिए वा, पो मुझा कमेंट न तवां जो कमेंट तो मुखे मिलियो कोने को, जेके मिलिया तो आओ शामिल करे वरता अथस। नाराज कीजी का गाल कोने का, शायद तवां जो कमेंट हेरियो थी वया हुंदा, मां दिसन या त तां खबर आ, मां पढ़ी वठंदी आ। नाराज न थियो बाबा, ये पाण में ते चार पंज सिर आयो, ये भी नाराज थींदा त कम की हलंदो।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए।
4: सिंध में एड्स वबा की सूरत इख्तियार करण लगी, सकरण भरसा एक गोठ में एड्स जा 20 केस जाहिर थियण बाद इलाके में खौफ की रह लहर छायल। एड्स में मुबतला बिन बारन जे फौत थियण जी भी तस्दीक, सेहत खातो मुतासिर माण्हुनि खे आगाही डियण बाद एड्स जा केस लिकायण लगो। गोठ रहमो किरियो में मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी चकास लाइ सिहत खाते पारां लगायल कैम्प में एड्स जे मरीज़नि जो इंकशाफ़ थियो। ॻोठाणनि मूजिब एड्स में वरतल माण्हुनि में ॿार, औरतूं ऐं नौजवान शामिल आहिनि। सिहत खातो इलाज जूं सहूलियतूं ॾियण लाइ बि तयार न आहे। ॻोठ 5000 आबादीअ ते वधल आहे, रुगो कुझु माण्हुनि जी टेस्ट थी आहे। समूरे ॻोठ जी स्क्रीनिंग करे मुतासिर मरीज़नि खे इलाज जी सहूलियत ॾिनी वञे। पीपल्स पार्टी वफ़ाक में साॻी पघार ते कम कंदी रहंदी, उबती ॻणप कंदड़नि जी ॻणप ऐं पाण बि सिधा थी वेंदा। अवाम पाकिस्तान जो मालिक आहे, कश्मीर ऐं पाकिस्तान जे तालुक खे केर बि ख़त्म नथो करे सघे। पाकिस्तान कश्मीर खां सवाइ मुकमिल नाहे। कश्मीर में ईंदड़ हुकूमत नवाज़ लीग जी हूंदी। आज़ाद कश्मीर जे शहर बाग में चूड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउला चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत लाइ सादी अक्सरियत हासिल करे वरिती आहे। ॿ भाङे टे जी अक्सरियत लाइ रुगो छह सीटूं घुर्बल आहिनि। जेके बि खटे वठंदासीं पीपल्स पार्टी जिता हाराईंदी, धांधलीअ जो इल्ज़ाम लॻाईंदी आहे। आज़ाद कश्मीर जे मसलनि खे हुकूमत ठहिण बाद तरजीह बुनियादनि ते हल कयो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब जो दौरो मुकमिल करण बाद वापसि ॾे रवानो। वज़ीर आज़म खे मदीने जे गवर्नर एयरपोर्ट ते अलविदा कयो। वज़ीर आज़म ॾे रवानगीअ खां पहिरीं वफ़द सां गॾु मस्जिद नबवी में हाज़िरी भरी ऐं रियाज़ुल जना में नफ़िल पढ़िया। शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल ते हाज़िरी भरे ज़ियारत जी सआदत बि हासिल कई। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया विच में थियल टे मुल्की दिफ़ाई मुआहिदे खे मुल्की तारीख़ जी अहम कामयाबी करार ॾेई छॾियो। मका दिफ़ाई मुआहिदे खे मुमकिन बणाइण ते वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जी साराह। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त दिफ़ाई मुआहिदो पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल जी ज़मानत आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके में ख़ारजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द मारिजी विया। फायरिंग जी ॾे वठि में पाक फ़ौज जो कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो। SPR मूजिब दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारे इतलाह ते ऑपरेशन कयो वियो। कार्रवाई दौरान 7 दहशतगर्द मारिजी विया। फायरिंग जी ॾे वठि में कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं घरू मोहसिन नकवी पारां शहीद कैप्टन हमज़ा अकराम खे भेटा पेश कई। सदर चयो त क़ौम बहादुर पुटनि जे क़ुर्बानीनि जे कर्ज़ी आहे। शहबाज शरीफ चयो त क़ौम शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जी थोराइती आहे। दहशतगर्दनि खे ख़त्म कयो वेंदो। ईरान जंग जारी रखण जी पोज़ीशन में नाहे, आपना हरमुस बि जल्द खुली वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान वटि मुआहिदे खां सवाइ ॿियो को गस नाहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ तां पोइ ते न हटंदो, जंग बदिरां ॻाल्हियुनि ज़रिए हक़ हासिल करण चाहियूं था। कराची जे नौजवान मीर रज़ा जे मौत जो कारण मालूम करण लाइ कबर कुशाई मढ़ जा जुज़ा वरिता विया। मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त मेडिकल बोर्ड जी जोड़ जक मां मुतमिन आहियूं। वकील जिब्रान नासिर चयो त मामले में असांजी ॻाल्हि ॿुधी वई आहे, उमीद आहे त शाम 6 वॻे ताईं समूरनि सवालनि जा जवाब मिली वेंदा। खानपुर शहर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबब 3 बार फोत, 7 बेहोश। गुलजार कुरेशी जे घर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबब 10 भाती बेहोश थिया। इलाज दौरान 5 वरनि जो ज़ैन कुरेशी ऐं 3 सालनि जी गुलज़ेब ऐं नींगरी मुस्कान फोत थिया। गुलजार कुरेशी, दिलावर, महानूर ऐं ॿियनि जो शिकारपुर में इलाज जारी। मुतासिर गुलजार कुरेशी मौजूद घर में पचायल छोला चांवरनि वारी बिरयानी खाइण बाद घर भातियुनि जी हालत खराब थी पई। उल्टियूं ऐं मोशन थियण बाद बेहोश थिया, जंहिं में 3 ॿार बि फोत थिया
1: आहिनि। सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
9: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
10: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
9: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
11: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
11: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
11: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
11: 03132525786।
7: जी हा, 2315525786।
11: GAFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी साथ तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
9: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: हज़ार आबादी ते बदल आहे रुगो कुछ माण्हुनि जी टेस्ट थी आहे समूरे ॻोठ जी स्क्रीनिंग करे मुतासिर मरीज़नि खे इलाज जी सहूलियत ॾिनी वञे पीपल्स पार्टी वफ़ाक में साॻी पघार ते कम कंदी रहंदी उबती ॻणप कंदड़नि जी ॻणप ऐं पाण बि सिधा थी वेंदा अवाम पाकिस्तान जो मालिक आहे कश्मीर ऐं पाकिस्तान जे तालुक खे केर बि ख़तम नथो करे सघे पाकिस्तान कश्मीर खां सवाइ मुकमिल न आहे कश्मीर में ईंदड़ हुकूमत नवाज़ लीग जी हूंदी आज़ाद कश्मीर जे शहर बाग में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउला चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत लाइ सादी अक्सरियत हासिल करे वरिती आहे ब भाङे टे जी अक्सरियत लाइ रुगो छह सीटूं घुर्बल आहिनि जेके बि खटे वठंदासीं पीपल्स पार्टी जितां हाराईंदी धांधलीअ जो इल्ज़ाम लॻाईंदी आहे आज़ाद कश्मीर जे मसलनि खे हुकूमत खणण बाद तरजीही बुनियादनि ते हल कयो वेंदो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सऊदी अरब जो दौरो मुकमिल करण बाद वापसि ॾे रवानो वज़ीर आज़म खे मदीने जे गवर्नर एयरपोर्ट ते अलविदा कयो वज़ीर आज़म ॾे रवानगी खां पहिरीं वफ़द सां गॾु मस्जिद नबवी में हाज़िरी भरी ऐं रियाज़ुल जना में नसिल पढ़िया शहबाज़ शरीफ़ रोज़ा रसूल ते हाज़िरी भरे ज़ियारत जी सआदत बि हासिल कई पीपल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया विच में थियल ट्रक मुल्की दिफ़ाई मुआहिदे खे मुल्की तारीख़ जी अहम कामयाबी करार ॾेई छॾियो मका दिफ़ाई मुआहिदे खे मुकमिल बणाइण ते वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जी साराह बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त दिफ़ाई मुआहिदो पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल जी ज़मानत आहे सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके में ख़ारजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन सत दहशतगर्द मारिजी विया फायरिंग जी ॾे वठि में पाक फ़ौज जो कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो आई एस पी आर मूजिब दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारे इलाइक़े ते इतलाह ते ऑपरेशन कयो वियो कार्रवाई दौरान सत दहशतगर्द मारिजी विया फायरिंग जी ॾे वठि में कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं घरू मोहसिन नक़वी पारां शहीद कैप्टन हमज़ा अकराम खे भेटा पेश सदर चयो त क़ौम बहादुर पुटनि जी क़ुर्बानीनि जी कर्ज़ी आहे शहबाज शरीफ़ चयो त क़ौम शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जी थोराइती आहे दहशतगर्दनि खे ख़तम कयो वेंदो ईरान जंग जारी रखण जी पोज़ीशन में नाहे आपना हरमुज़ बि जल्द खुली वेंदो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान वटि मुआहिदे खां सवाइ ॿियो को गस नाहे ईरानी सदर मसूद पज़ीशान चयो आहे त ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ खां पोइते न हटंदो जंग बदिरां ॻाल्हियुनि ज़रिए हक़ हासिल करण चाहियूं था कराची जे नौजवान मीर रज़ा जे मौत जो कारण मालूम करण लाइ कबर कुश आई मड़ जा जुज़ा वरिता विया मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त मेडिकल बोर्ड जी जोड़जक मां मुतमिन आहियूं वकील जबरान नासिर चयो त मामले में असांजी ॻाल्हि ॿुधी वई आहे उमीद आहे त शाम छह वॻे ताईं समूरनि सवालनि जा जवाब मिली वेंदा खानपुर शहर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण बाद टे ॿार फोत सत बेहोश गुलज़ार कुरेशी जे घर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि ॾह भाती बेहोश थिया इलाज दौरान पंज वरनि जे ज़ैन कुरेशी ऐं टिनि सालनि जो गुलज़ेब ऐं नींगरी मुस्कान फोत थिया गुलज़ार कुरेशी दिलावर मानूर ऐं ॿियनि जो शिकारपुर में इलाज जारी आहे मुतासिर गुलज़ार कुरेशी मूजिबि घर में पचायल छोला चांवरनि वारी बिरयानी खाइण बाद घर भातियुनि जी हालत ख़राब थी उल्टियूं ऐं मोशन थियण बाद बेहोश थिया जंहिं में टे ॿार बि फोत थिया आहिनि पंजाब जे शहर लाहौर में बरसात बाद रोड रस्ता पाणी हेठि अंडर पासिस बि बरसाती पाणीअ सां भरिजी विया शहर जे हेठां वारनि इलाइक़नि में बि गोॾे जेॾो पाणी बीठल सिंध समेत समूरे मुल्क में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जी हड़ताल ट्रांसपोर्टर्स जो मसलो हल न थियण ते सीएम हाउस ॾांहुं मार्च करण जो ऐलान गुड ट्रांसपोर्टर जो चवण आहे त हड़ताल सबब थींदड़ नुक़सान जे ज़िमेवार वफ़ाक ऐं सूबाई हुकूमतूं हूंदियूं ॻाल्हियुनि जा दर बंदि नाहिनि कया मसला हल न थिया त धरणो हयो वेंदो सिंधु दरिया में चाढ़ बावजूद सूबे में पाणी जी खोट बरक़रार मुख़्तलिफ़ शहरनि में आबादकारनि जा पाणीअ खोट ख़िलाफ़
4: तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है
5: हर उम्र में चलने वाली दोस्ती लिप्टन दोस्ती जितनी स्ट्रॉन्ग
3: जमाली रोड वारी पुल ते धरणो फसल पचाइण लाइ पाणी ॾियण जो मुतालबो मोरो भरसां नौजवान औरत मुबैना तौर ते गोलियूं हणी कतल। गोठ जंगू खान लगारीअ में 18 सालनि जी रियाना लगारीअ खे मुबैना तौर अगवाबाद वापसीअ ते कतल कयो वियो। मक़तूल औरत जे वालिद जमाल लगारी चयो आहे त कुझु वक़्तु पहिरियां वसीम धीअ खे अगवा करे वियो हो। पाक किताब ते धीअ वापसि ॾिनी वई। अॼु सुबुह वसीम अगड़ो हथियारबंद माण्हुनि सां गॾिजी घर अंदरि दाख़िल थी धीअ खे पिस्टल जा फायर करे क़तल कयो आहे। पुलिस इतलाउ बावजूद कार्रवाई नाहे कई।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: इन मिट्टी जा रंग रौनकू ए ज़रख़ेज़ी असाजे हारिय साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अञाब वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे। सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3121-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
9: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना।
3: कौन हेल्थ डिपार्टमेंट जो कोप नुमाइंदो इंतजामिया जिले की का भी माना असाध न आई है तो वाकई मसलो थो या न थो
4: तो बाबा इन मामले नोटिस वरतो ये तमाम सीरियस मसलो आ ही तेजी से फैलजे पी जो ब महीना पे अठ बह मरीज अचे हुआ तो बजार निकता है बिन दिन में तो समझो तो रेशो वे तो बसो में बिकता
3: इलाज वगैरह को स्क्रीनिंग थी खबर तो पे पॉजिटिव है पर दिनों जैसे बारे
5: सिंध में HIV वबा की सूरत अख्तियार कर लगी सकरण भरसा एक गोठ में HIV जा वीह केस जाहिर थियण बाद इलाके में खौफ HIV में मुबतला बिन बारन के पोत थियण की भी तस्दीक सेहत खातों मुतासर मान के आगाही दियण बाद एड्स जा केस लिकाय लगो गोठ रहमून केरियो में मुख्तलिफ बीमारियों की चकास लाए सेहत खाते पारा लगायल कैंप में एड्स के मरीजों को इंकशाफ थो गोठाणन मूजिब HIV में वरतल माण्हुनि में ॿार औरतूं ऐं नौजवान शामिल आहिनि सिहत खातो इलाज जूं सहूलियतूं ॾियण लाइ बि तयार नाहे ॻोठ 5000 आबादी ते ॿधल आहे रुगो कुझु माण्हुनि जी टेस्ट थी आहे समूरे ॻोठ जी स्क्रीनिंग करे मुतासिर मरीज़नि खे इलाज जी सहूलियत ॾिनी वञे
6: और ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी।
5: उगती गणप कंदड़न की गणप पान पी सीधा थी वेंदा पीपल्स पार्टी पाक में सागे पगार ते कम कंदी रहंदी अवाम पाकिस्तान जो मालिक है कश्मीर ए पाकिस्तान के ताल्लुक के केर भी खत्म न तो कर सके पाकिस्तान कश्मीर का सिवाय मुकम्मल ना है कश्मीर में ईंदड़ हुकूमत नवाज लीग की होंगी आजाद कश्मीर के शहर बाघ में चूंड जलसे के खिताब कदे राणा सनउल्ला कह है आजाद कश्मीर में हुकूमत लाए सादी अक्सरियत हासिल कर वरती है ब भाग्य टे की अक्सरियत लाए रुगो 6 सीटू घुर्बल आन जेके भी खटे वेठासी पीपल्स पार्टी जिता हाराईंदी धांधली जो इल्ज़ाम लगाईंदी है कश्मीर जा मसला हल कंदासी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब जो दौरो मुकमल करण बाद देह पहुची वियो वज़ीर आज़म के मदीने के गवर्नर एयरपोर्ट से अलविदा कयो हो वज़ीर आज़म ने रवानगी का पहरी वफद से गड मस्जिद नबी में हाजिरी भरी ए रियासुल जन्ना में नफिल पढ़िया शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल से हाजिरी भरी ज़ियारत की सआदत भी हासिल कई पीपल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया विच में थियल टे मुल्की दिफाई माहिदे के मुल्की तारीख की अहम कामयाबी करार दई छो मक्का दिफाई माहिदे के मुमकिन बनाने से वज़ीर आज़म ए फील्ड मार्शल की सारा लाल भुट्टो ज़रदारी चयो त दिफाई माहिदो पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है अमरीका पारा समूरा शर्त तस्लीम करण बाद ही अपना हरमुस खुलंद ईरानी पासदार इनकलाब है तो अपना हरमुस असा लाए रुगो आप ही रस्तों पर ताकत ए कुत जो जरियो है अपना हरमुस से उमान से गाल आखिरी मरहले में आन मुदाखलत जा नतीजा खराब निकरंदा ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामदाई के सलाहकार अली अकबर विलायती है तो गैर मुल्की फौज के खिते में निकरी वजन घुर्जे खिते जहा मुल्क सरकार बताए सलामती यकीनी बनाए सकन था

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़ GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
3: खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
6: सुनते रहो GFM 90.4

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।

0: सिंध एक्शन कमेटी सिंधी वहदत ए खुद मुख्तारी के तहफ़ लाए मुज़ाहमत जो ऐलान करे 22 अगस्त से हैदराबाद में अवामी एहतजाज सद दई छो जामशोरे में सिंध एक्शन कमेटी के इजलास सिंध के वहदत पानी मादनियात जमीन ए माली खुद मुख्तारी समेत मुख्तलिफ़ मामलों से गौर किया नवन सूबन बाबत घर वजीर मोहसिन नकवी के बयान की मुसम्मत अठाही आईनी तरमीम सिंध की वहदत वसीलन ए सूबाई खुद मुख्तारी लाए खतरो करार इम्कानी तरमीम के फौरी तौर वापस वो मुतालबो अगवाणन है सिंध 6 करोड़ सिंधियों जो तारीखी वतन है जैसी वहदत से को भी वार कबूल न कर सिंध असेंबली नवन सूबन खिलाफ बीह ठहराव मंजूर कर सिंध एक्शन कमेटी 26 ए 27 आईनी तरमीम के खत्म कर शफाफ चूंड कराने जो भी मुतालबो कर
1: उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी।
0: उपती गणप कंदड़न की गणप ए पान भी सिद्धा थी वेंदा पीपल्स पार्टी वफाक में सागी पगार ते कम कंदी रहंदी अवाम पाकिस्तान जो मालिक है कश्मीर ए पाकिस्तान के तालुक के केर भी खत्म न तो कर सके पाकिस्तान कश्मीर का सिवाय मुकम्मल न है कश्मीर में इंदड़ हुकूमत नवाज लीग जो होंगे आजाद कश्मीर के शहर बाग में चूंड जलसे के खिताब कर राना सनाउला चाहे तो आजाद कश्मीर में हुकूमत लाए सादी अक्सरियत हासिल कर वरती है ब भांगे टे की अक्सरियत लाए रुगो 6 सीटू घुर्पल जे भी खटे वेठासी पीपल्स पार्टी जिता हाराईन्दी धांधली जो इल्जाम लगाईन्दी है कश्मीर जहां मसला हल कदी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब जो दौरो मुकमल करने बाद देह पहुंची वो वज़ीर आज़म के मदीने के गवर्नर एयरपोर्ट से अलविदा कर वज़ीर आज़म देह रवानगी का पहरी वफद से गड मस्जिद नबी में हाजिरी भरी और रियाज़ुल जन्ना में नफल पढ़िया शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाजिरी भरे ज़ियारत की सआदत भी हासिल कर पीपल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्की विच में थियल टे मुल्की दिफाई मुआदे के मुल्की तारीख की अहम कामयाबी करार दई छो पक्का दिफाई मुआदे के मुमकिन बनाने से वज़ीर आज़म ए फील्ड मार्शल की सारा लाल भुट्टो ज़रदारी दिफाई मुआदो पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्की के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है अमरीका पारा समूरा शर्त तस्लीम करण बाद ही अपनाए हुरमुज़ खुलंद ईरानी पासा इनकलाब है अपनाए हुरमुज़ असा लाए रुगो आपी रस्तो न पर ताकत ए कुवत जो जरियो है अपनाए हुरमुज़ से उमान से गालू आखिरी मरहले में आन मुदाखला जहां नतीजा खराब निकरंदा ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सलाहकार अली अकबर विलायती है गैर मुल्की फौज के खिते में निकरी वजन घुर्जे खिते जहा मुल्क सहकार बधाए सलामती यकीनी बनाए सकन था।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
3: खु़शख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03125252786
1: जी हा 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: रखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: इन मिट्टी जा रंग रौनकू ए जरखेजी असाजे हारिय साई ताहिन आबाद हाने इन जो अन्याब वधी का मान वधायन लाए तवा सा गद आए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कय आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणु छटाई करण में आसान दे नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ए बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-32-41-230
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962 4

0: रज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
2: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए।
3: मीर रज़ा के गोली पुठियां लगल है, जिस्म ते तशद्दुद जा बे निशान मौजूद आहिन। कराची जी नौजवान मीर रज़ा अली जी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छिरकाइंदड़ इंकशाफ। मीर रज़ा अली जी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चयो वियो आहे त पुलिस सर्जन जी उथारियल 14 सवालन जा जवाब मिली विया आहिनि। मीर रज़ा जी मौत जो कारण मालूम करण लाइ कबर कुशाई करे मर जा जुज़ा वरिता विया हुआ। जुज़नि खे हतमी जाइज़े लाइ लेबॉरेटरी मोकिलियो वियो आहे।
4: और ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी।
3: उपती गणप कंदड़न जी गणप आए पान भी सीधा थी वेंदा। पीपल्स पार्टी वफाक में सागी पघार ते कम कंदी रहंदी। अवाम पाकिस्तान जो मालिक है, कश्मीर ए पाकिस्तान के तालुक के केर भी खत्म नथो करे सके। पाकिस्तान कश्मीर का सवाए मुकम्मल ना है। कश्मीर में इंदड़ हुकूमत नवाज लीग जी हुंदी। आजाद कश्मीर के शहर बाग में चून जलसे के खिताब कंदे राणा सनाउला जो चवण हो तो आजाद कश्मीर में हुकूमत लाए सादी अक्सरियत हासिल करे वरती है। ब भांगे टे की अक्सरियत लाए रुगो 6 सीटू घुर्बल आन जे भी खटी वी। पीपुल्स पार्टी जिता हाराइंदी दांधली जो इल्जाम लगाइंदी है। कश्मीर जा मसला हल कंदासी। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब जो दौरो मुकम्मल करण बाद देह पहुंची वो। वजीर आजम के मदीने के गवर्नर एयरपोर्ट से अलविदा कयो हो। वजीर आजम देह रवानगी का पहरी वफद से गड मस्जिद नबवी में भी हाजिरी भरी ए रियाजुल जना में नफिल पढ़िया। शहबाज शरीफ रोजा रसूल से हाजिरी भरे जियारत की सआदत भी हासिल कई। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया विच में थियल त्रिमुल्की दिफाई मुआहदे के मुल्की तारीख की अहम कामयाबी करार दे छो। मक्का दिफाई मुआहदे के मुमकिन बनाने ते वजीर आजम ए फील्ड मार्शल की वाखाण। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो तो दिफाई मुआहदो पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया की महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। ओमान सा मुआहदे के वेझो पहुंची वया आयू। मुआहदे जो मतलब आबनाए हुरमज जो खोलण न हों। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची जो चवण हो तो आबनाए हुरमज में बहरी जहाजन की लंघ ए इंतजाम बाबत ओमान से गालियों आखिरी मरहले में दाखिल थी वयू। आबनाए हुरमज जो खोलण कुछ बेन शर्तन से भी गंझल है। इस्लामाबाद मफाहमत नामे में भंजकड़न से डंड वो मामलो भी शामिल है। पासदारान इनकलाब है तो अमरीका पारा समूरा शर्त तस्लीम करण बाद ही आबनाए हुरमज खुल। सिक्योरिटी फोर्सिस जो खैबर पख्तूनख्वा में खारजी दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन 7 खारजी दहशतगर्द मारजी वया। अंगू में फायरिंग की डेवट में पाक फौज जो कैप्टन हमजा इकराम शहीद थी वो। ISPR मूजिब अंगू में दहशतगर्दन की मौजूदगी बारे इतलाते ऑपरेशन किया वो। कार्रवाई दौरान 7 दहशतगर्दन के मारो वो। फायरिंग की डेवट में कैप्टन हमजा अकरम शहीद थी वो। सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम ए घरू वजीर पारा शहीद कैप्टन हमजा इकराम के भेटा पेश। सदर जो चवण हो तो कौम बहादुर पुटन की कुर्बानन की कर्जी है। वजीर आजम चयो तो कौम शहीदन ए गाजन की थोरायती है। दहशतगर्दन के खत्म कयो वेंदो। सिंध के वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह की सदारत हेठ 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों बाबत मजहबी आलमन जो अहम इजलास। वडे वजीर पारां 12 रबीउल अव्वल के मौके से सूबे में सिक्योरिटी का इंतजाम यकीनी बढ़ाने की हिदायत। मुराद अली शाह चयो तो मजहबी हम आहंगी में आलमन जो किरदार साराह जोगो है। रेलन बाबत मसला जल्द हल कया वन। सिंध एक्शन कमेटी सिंध की वहदत ए खुदमुख्तियारी की तहफुज लाए मजामत जो ऐलान कंदे 22 अगस्त से हैदराबाद में अवामी एहतजाज जो सद दे छो। जामशुरे में सिंध एक्शन कमेटी के इजलास सिंध की वहदत पानी मैदनियात जमीन ए माली खुदमुख्तियारी समेत मुख्तलिफ मामलों से गौर विचार। नवन सूबन बाबत घरू वजीर मोहसन नकवी के बयान की भी मजम्मत। 28 आइनी तरमीम सिंध की वहदत वसीलन ए सूबाई खुदमुख्तियारी लाए खतरो करार। इम्कानी तरमीम के फौरी तौर वापस वठण जो भी मुतालबो। अगवाणन जो चवण हो तो सिंध 6 करोड़ सिंधन जो तारीखी वतन है जैसी वहदत से को भी वार कबूल न किया वो। सिंध असेंबली नवन सूबन खिलाफ बीहर ठहराव मंजूर करे। सिंध एक्शन कमेटी पारा 26 ए 27 आइनी तरमीमन के खत्म करण ए शफाफ चूंडू कराने जो भी मुतालबो किया वो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
8: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-843-842
9: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
9: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
10: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
7: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03125252786
7: जी हा 2301-25-25-786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज. मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
4: सुनते रहो GAFM 90.4.

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
5: ख़ुशख़बरी, ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: काश हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
1: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

0: मीर रज़ालीअ खे गोली पुठियां लॻल आहे, जिस्म ते तशद्दुद जा निशान बि मौजूद आहिनि। कराची जे नौजवान मीर रज़ा अलीअ जी शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छिरकाईंदड़ इंकशाफ़ साम्हूं अची विया। मीर रज़ा अलीअ जी शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चयो वियो आहे त पुलिस सर्जन जे उथारियल 14 सवालनि जा जवाब मिली विया आहिनि। मीर रज़ा जे मौत जो कारण मालूम करण लाइ क़बर कुशाई करे मर जा जुज़ा वरिता विया हुआ। जुज़नि खे हतमी जाइज़े लाइ लेबोरेटरी मोकिलियो वियो आहे।
1: गिनती शुरू हो चुकी है, टिक टॉक,
2: और ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी।
0: उपती गणप कंदड़न जी गणप ऐं पाण बि सिधा थी वेंदा। पीपल्स पार्टी वफ़ाक में साॻी पघार ते कम कंदी रहंदी। अवाम पाकिस्तान जो मालिक आहे। कश्मीर ऐं पाकिस्तान जी तालुक खे केर बि ख़तम नथो करे सघे। पाकिस्तान कश्मीर खां सवाइ मुकमल नाहे। कश्मीर में ईंदड़ हुकूमत नवाज़ लीग जी हूंदी। आज़ाद कश्मीर जे शहर बाग में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउल्लाह जो चवणु हो त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत लाइ सादी अक्सरियत हासिल करे वरिती आहे। ॿ भाङे टे जी अक्सरियत लाइ रुगो 6 सीटूं घुर्बल आहिनि, जेके बि खटी वठंदासीं। पीपुल्स पार्टी जितां हाराईंदी आहे दांधलीअ जो इल्ज़ाम लॻाईंदी आहे। कश्मीर जा मसला हल कंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सऊदी अरब जो दौरो मुकमल करण बाद डेह वापसि पहुची वियो। वज़ीर आज़म खे मदीने जे गवर्नर एयरपोर्ट ते अलविदा कयो। वज़ीर आज़म डेह रवानगीअ खां पहिरीं वफ़द सां गॾु मस्जिद नबवीअ में हाज़िरी भरी ऐं रियाज़ुल जना में नफ़िल बि पढ़िया। शहबाज़ शरीफ़ रोज़ा रसूल ते हाज़िरी भरे ज़ियारत जी सआदत बि हासिल कई। पीपी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया विच में थियल टे मुल्की दिफ़ाई मुआदे खे मुल्की तारीख़ जी अहम कामयाबी करार ॾेई छॾियो। मका दिफ़ाई मुआदे खे मुमकिन बणाइण ते वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल जी वाखाण। बिलावल भुट्टो चयो त दिफ़ाई मुआदो पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया जी महफ़ूज़ मुस्तक़बिल जी ज़मानत आहे। ओमान सां मुआदे जे वेझो पहुची विया आहियूं। मुआदे जो मतिलब आबनाए हुरमज़ जो खुलण न हूंदो। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राखची चयो आहे त आबनाए हुरमज़ मां बहरी जहाज़नि जी लंघ ऐं इंतज़ामनि बाबति ओमान सां ॻाल्हियूं आख़िरी मरहले में दाख़िल थी वियूं आहिनि। आबनाए हुरमज़ जो खुलण कुझु ॿियनि शर्तनि सां बि ॻंढियल आहे। इस्लामाबाद मफ़ाहमत नामे में भञकड़ियुनि ते ॾंड वारो मामिलो बि शामिल आहे। पासदारान इनकलाब चयो त अमरीका पारां समूरा शर्त तस्लीम करण बाद ई आबनाए हुरमज़ खुलंदो। सिक्योरिटी फोर्सिस जो खैबर पख्तूनख्वा में खारजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन 7 दहशतगर्द मारिजी विया। हंगू में फायरिंग जी ॾे वठि में पाक फ़ौज जो कैप्टन हमज़ा इकराम शहीद थी वियो। ISPR मूजिब दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारे इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो। कार्रवाई दौरान 7 दहशतगर्द मारिया विया। फायरिंग जी ॾे वठि में कैप्टन हमज़ा अकरम शहीद थी वियो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म ऐं घरू वज़ीर पारां शहीद कैप्टन हमज़ा इकराम खे भेटा पेश। सदर चयो त क़ौम बहादुर पुटनि जी क़ुर्बानीनि जी कर्ज़ी आहे। वज़ीर आज़म जो चवणु हो त क़ौम शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जी थुराइती आहे। दहशतगर्दनि खे ख़तम कयो वेंदो। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि 12 रबीउल अव्वल जी तयारियुनि बाबति मज़हबी आलमनि जो अहम इजलास। वॾे वज़ीर पारां 12 रबीउल अव्वल जे मौक़े ते सूबे में सिक्योरिटी जा इंतज़ाम यकीनी बणाइण जी हिदायत। मुराद अली शाह चयो त मज़हबी हम आहंगीअ में आलमनि जो किरदार साराह जोॻो आहे। रेलनि बाबति मसला जल्द हल कया वञनि। सिंध एक्शन कमेटी सिंध जी वहदत ऐं ख़ुदमुख़्तियारी जे तहफ़ लाइ मज़ाहमत जो ऐलान कंदे 22 अगस्त ते हैदराबाद में अवामी एहतजाज जो सॾु ॾेई छॾियो। जामशोरे में सिंध एक्शन कमेटी जे इजलास, सिंध जी वहदत, पाणी, मैदनियात, ज़मीन ऐं माली ख़ुदमुख़्तियारी समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ग़ौर वीचार कयो वियो। नवनि सूबनि बाबति घरू वज़ीर मोहसिन नकवीअ जे बयाननि जी बि मज़म्मत। 28 आइनी तरमीम सिंध जी वहदत, वसीलनि ऐं सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी लाइ ख़तरो करार। इम्कानी तरमीम खे फौरी तौर ते वापसि वठण जो मुतालबो। अॻवाननि चयो त सिंध 6 करोड़ सिंधियुनि जो तारीख़ी वतन आहे, जंहिंजी वहदत ते को बि वार क़बूल न कयो वेंदो। सिंध असेंबली नवनि सूबनि ख़िलाफ़ 2 ठहराउ मंज़ूर करे सिंध इलेक्शन कमेटीअ पारां 26 ऐं 27 आइनी तरमीमनि खे ख़तम करण ऐं शफ़ाफ़ चूंडूं कराइण जो बि मुतालबो कयो वियो।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जो पकियूं छितूं लगरा लाए खुश खबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जो छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लगरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
9: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
9: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
10: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
11: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
11: 0331252576।
7: जी हा, 2315525786।
11: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: कराची के नौजवान व्यापारी मीर रजा के गोली पुठियां लगण ए जिस्म ते तशद्दुद के निशानन जो इंकशाफ कबरकुशाई का पोए शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जा तफसील सामू अची वया। शुरुआती रिपोर्ट में मीर रजा जो पसराटू बे भगल होने की तस्दीक जांच की रोशनी जो दायरो वधाने जो इम्कान। जरियन जो चवण है मीर रजा की कबरकुशाई दौरान 17 सैंपल्स महफूज किया वया हुआ। मेडिकल बोर्ड जा मेंबर मजमूई तौर से 19 सैंपल्स की जांच कंदा। केमिकल एग्जामिन डीएनए रिपोर्ट्स की रिजल्ट का 4 दिन अंदर अचण जो इम्कान। वकील जिब्रान नासिर जो चवण है पुलिस मीर रजा के वारसन के हिरासा कर रही है। यह एक नौजवान जो कतल है। पुलिस जांच नतीजा है।